समूह प्रबंधक साहेबान धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जिन्ना शुकराना करिए थोड़ा है। डॉक्टर गुरनाम सिंह वीर गुरप्रीत सिंह वीर राजविंदर सिंह जी उस्ताद जी और भाई निर्मल सिंह जी जिन्हां दे उद्दम सदका समूह प्रबंधक साहेबाना का सदका अपना सारिया ने कि जो महाराज की बाणी सारी रागों में गाई है निरोल रागों में गा के हाजरी भरी है। आओ हुण समाप्ति है, सलोक पढ़ांगे नाल ही अरदास भी करांगे।

मन मह सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न परवरया। राग आसा महला चौथा सो पुरख इको ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते

हौ तो दबिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवा है जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जान जुग मैं सुखवासी। से मुकत पाए, जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाह।

तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो पावै मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे वड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निःचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब।

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ै पई ले निवासा। पानी पावक तिन्हें किया, पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले,

प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवां। भई परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की।

मारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दह मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा।

आयो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं।

ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पहे।

थारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार ते आए है, ताकि काल निकट न आए है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरे

सतनाम डंडौत बंदन अलंक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ

राखी रहना, पार होए सह मिलेंगे बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े से उतरे, जो शरदा कर सिम दे गुरपार उतारना।

संग मोहे उदारु सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कह मन विश्राम रहाउ प्रभ कह सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कह सिमरन दुख जम न सै प्रभ कह सिमरन काल पर हरै प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कह सिमरन अनदिन जागै प्रभ कह सिमरन भौ न व्यापै प्रभ कह सिमरन दुख न संतापै प्रभ कह सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कह सिमरन जप तप पूजा प्रभ कह सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कह सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कह सिमरन दरगह मानी प्रभ कह सिमरन हुए सुफला प्रभ कह सिमरन सुफल फला से सिमरै जिन आप सिमराई नानक ताकै लागो पाए प्रभ कह सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कह सिमरन उदरे मूचा

प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए। अमृत नामृत माहि समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना। नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन प्रवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बसह हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कभू ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुणवानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन नेह चलियासन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन। प्रभ कै सिमरन अनहत चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार। सिमरै से जन जिन कहो प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया।

नान कहू न सी जई बिन नावे पत जायष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस कारण विकोट गवावे एक भी न दे दस पीर ले तो मूड़ा कौका करे। जिस ठाकुर से नाही चारा ताकू की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रमीठा सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व थोग नानक तिन पाया गंध साहु अपनी दे रास खात पीत वरतैन दुलास। अपनी अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता पिही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै। जिसकी बस्ती से आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मन है मत है उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हेत सर पर होत जान अनेत बिर की छाया स्यों रंग लावै ओ बिन सह मन पछतावै जो दिसै सो चल नहार लुपट रहो तय अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावै नेहे ताकू हाथ न आवै के हे मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती सुवस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या ध्रुमो अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्त्र पग साथ की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्व को ही रह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को ता वह मिथ्या मन पर लोभ लुभा वह मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बास लित विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पै सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा। साच बिना कहोवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन ब्रिथा बिहाई मेघ बिना ज्यो खेती जाए गो बिन भजन बिन ब्रिथे सब काम ज्यो कृपन की निरार्थ दाम। धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ रहत अवर कछवर कमावत। मानी प्रीत मुखो गंड लावत जान नार प्रभु परवीन बार भेख न गाऊ भीन अवर उपदेश आप न करे। आवत जावत जन मैं मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पानी तिन प्रभु जाता। नानक कुन जन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पह मान आप है आप आप करत नबेरा। किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा पाप सियान सगल ते रह सब का जाने आत्म की रहत। जिस भाव है तिस लय लड़ लाए तांत नंत रहा सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ती अमृत काहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर। जे प्रसाद कृ संग सुख बसना हाथ पहर सिमर हो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्या कतवर लुभावै। जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी जय। जे प्रसाद तु सब को माने मुक्ता को जस रसन बकाने। जी प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दर गय मान पावे नानक पद छेती कर जावे। जे प्रसाद आरु कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तिरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाकी मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद अश्व हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना रात रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत सहत्याई। तिसै त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदान मनाट पैर कर तिस कर ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप।
जी प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जी प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलहै जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सहज समावै सब प्रभु त्याग और कत लागू गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल अमन हो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुथा को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सुराच जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मातूतम हुए सर्व निदान प्रभ तेरी माया पुह कछु न किन हूं लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक किन कह कछु नहात श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचर्ज कथा स्तुपदी साधक संग मुखो जल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सभूत नबेरा साधक संग पाए नाम रतनु साधक संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरनै कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्माय सुमानी साधक संग गुचर मिलै साधक संग सदा पर फुल्लै साधक संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होई सब की रेन साधक संग मनु हर बैन साधक संग न कतहु तावै साध संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सु प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साधक संग न भीका पैरु साधक संग न ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नहीं होता साधक संग तजै सब आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हूं तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गोचर लै साधु कै संग अजर सह साधक संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुंचै साधक संग दड़ै सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय कर सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सब थान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट तो होत निहाल साधक संग कलुकता।

साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साधगी महिमा भेद न जाने, जीता सुने तीता बख्याने। साधक उपमा त्यो गुण ते दूर, साधक उपमा रही भरपूर। साधक की शोभा का ना ही अंत, साधक की शोभा सदा बेअंत। साधक की शोभा ऊंच ते ऊंची, साधक की शोभा मूछ ते मूछी। साधक की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न बेख बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोक जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्य मान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह तीरजेक ज्यो बसदा को खोद को चंद लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ नानक ज्यो पाव कर सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे तारू पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मने अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दिश अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहि, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहि। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उरतार है जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार है। प्रदीप मिथ्या ना ही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु। पर त्रय रूप न पिख है नित्र, साधक टैल संत संग हित। कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानकूट मदे को ऐसा परसु। बैस नो सो जी सुपर सुपर सन, बिशन की माया ते हो भिन्न। कर्म करत हुए नहीं कर्म, तिस बैसनु का निर्मल धर्म। काऊ फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे। मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ वरह नाम जपावै, नानक को बैसनु परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिन सह सगला परम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म। सासन पापा मलको वै, तिस भगवती की मत उत्तम हो वै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तने अर्पै विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नान कैसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुद्धै, राम नाम आत्म है शुद्धै। राम नाम सार रस पीवै, सो पंडित का उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै। वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जानै असूल। चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावै जन कोए। कर कृपांतर उतारै, पस प्रेत मुक्त पात्र।

ਉਤਾਰੈ ਸਰਬ ਔਕਾਤ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣਗਾਮ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮ ਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਭਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੂ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤ ਆਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਅਰਕ ਤੈਸਾ ਸੋਗ ਸਦਾਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾ ਈਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕੋ ਪੁਰ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿੰਨਾ ਵਾਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰੇ ਆਪ ਅੰਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਵਿਨਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭਰਮੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਵਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਪੇਕਾਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹੀ ਰਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਹੇ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਣਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸਿਅਰ ਸੂ ਨਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵਦਾਨ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸ਼ਾਸਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰਮੇਰ ਸਵਰਨ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਗਿ ਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾ ਸਭ ਤੇ ਨੀਰੈ ਸਭ ਉਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੋਜੋ ਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਵੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ ਆਤਮ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਗਿਨੋ ਵਿਸਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰੋ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦੈ ਕੇ ਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾ ਸਮਾਤ ਤਾ ਕਾਂਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤਾ ਤੁਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਭੈ ਸਤ ਸਤ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੇ ਕਹਿ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਕਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਧਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁਕ ਅਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੇ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਸੁਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ ਦੁਆ ਸੁਰਿਆ ਕਾਪ ਸੁਆਮੀ ਖਿਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੁਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ
आन जानत भिख्या मै रचै जी जानत अपना बचै भरमे भूला दह दिस्तावै निमक माई चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजन ना मिले किन मै नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा तिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीश ताका लेखा न गनै जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही सहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावै सोई पंथियो कबहु ऊंच नीच मैं बसै कबहु सोग हरक रंग हसै कबहु निंद छिंद व्यवहार कबहु बकास पयाल कबहु बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबहु नृत्य करै बपात कबहु सोई रह दिन रात कबहु मां क्रोध विकराल कबहु सर्व की हो तरवाल कबहु होए वह बड राजा कबहु पेकार नीच का साजा कबहु अपकीर्त में आवै कबहु भला भला कहावै ज्यों प्रभु राखै तिहि रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख्यान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया निक जोन भरमै भरमिया नाना रूप जो सुहागी दिखावै जो प्रभावै तिवै नचावै जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा वर न कोए कबहू सा संगत उपावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रत्येक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान श्लोक सुखी बसै मसकीनी आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने में जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहा वह जन्म मरै वो जोन परमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकिया मुक्ता गय सुख पावै धनवंता हुई कर गर्भ आवै तिन समान का संग न जावै बोलस कर मान कूपर करे आस फल पीतरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में हुए जाय पसमंत किसन वदय अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कूट कर्म करे हो तारी श्रम पावै सगले बिरतारी निक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दर गह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन होए कहु नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुस्ते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब ये जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल ना ही चीत जब लग मुह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुरु प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटे लख उठतावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग भिख्या के करै न तृप्तावै खप कमरै बिना संतोख नहीं कोरा जय सुपन मनोरथ विरथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बिडभागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ का विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप आप रब सोए जो किसकी नसु अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग बूझै देखै करै विवेका पहे का पहे अनेक मरै न बिन से आवे न जाए नान सदी रहा समाया आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनो अपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते पिन कहो किछ होए थान तनंतर एक कै सोए अपने चलता आप करने हार कौ तो करे रंग अपार मन में अमन अपने मारि नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मध्य किन बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप वत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण वख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक
संत शरण जो जन परे सो जन उदरन हार संत की निंदा नान का बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटे संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टे संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन सुबा ते हीन संत के हथे को रखे न कोय संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन कागजों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णामय जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी काओ थाओ को नाहि नानक संत पावै ताओ पीगत पाए संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक किंटिक न पाई संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावै तस्का पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा भिखारी संत का दुखी जन्मै मरै संत के दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को ना ही ठाऊ नानक संत पावै तां लय मिलाए संत का दुखी अध बीच ते टूटै संत का दुखी कितै काज न पहुँचै संत के दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोता ज्यों सास बिना मृत की लोता संत के दुखी की जड़ किच नाही अपन बीजा पे ही खाही संत के दुखी कवर न रखन हार नानक संत पावै तां लय उभार संत का दुखियों बिरलाए ज्यों जल बिहोन मछली तल फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यों पाव किंदर नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै केला ज्यों बुआड़ तिलके तुमाहे दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक ज्योत पावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरै न जीवाई है संत के दुखी की पुजै न आसा संत का दुखी उचले निराशा संत का दुख न तृष्ट है कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए पया कीर्त न मिट है कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसक्यो कर निहार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसद करो दिन रात सहत्या सास गिरा सब कछ वर्तै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेलाप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिसा पर नाम दे बड़ भागी नानक जन से श्लोक तज हो सियानक सुरजन हो सिमर हो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पहु जाष्टपदी मानु की टेक वृथि सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिए रह अगाई बहुत न तृष्णा लग गया मारे रखे को आप मानु कह किस नाई हाथ जिसका हुक्म सुखोए जिसका नाम रखंठ भरोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लग गए कोई उस मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसन अमृत पी उसका सुहेला कर लह जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग सासु बिन सब संग चरण चलो मारो गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर गह नानक जल मत्था बिट भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पहचाने तुत की सूझी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक दिना निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपना सुजय तिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा जिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसन लागै दुख जिसको हर प्रमन चित आवै सो सन सुहेला नहीं दुलावै जिस पर व्य अपना कृपा करै सो सेवक को किस ते डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तत्सभुजिया जब देखो तब सब किच मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल
ਨੈ ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨੈ ਕਿਛੁ ਮਰਿਆ ਪੰਚਲ ਤਾਪ ਹੀ ਕਰੈ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਰਿਚ ਤਾਪ ਉਤਾਪ ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ ਧਾਰਨ ਧਾਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਲ ਕਪੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੂਤ ਸੂਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨਵੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸਭ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੂਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਿਟ ਭਾਗੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੁਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਇ ਸਮਾਏ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆਏ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਤੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਢਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨਵਾਹੀ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਉਪਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਕਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਵ ਹੈ ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਰੋਗ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਆਪ ਚੜ ਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ਼ਤਰੈ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜੋ ਮਾਮ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਲਪਟਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਈ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਤਾਜਮ ਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੂਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੂਲ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਹਿ ਸੰਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ ਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੀ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਉ ਵਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਉ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਅਨਿਕ ਬਿਗੰਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ ਉਠ ਗਈ ਸੰਤੈ ਦਰਿਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲ ਨਹਾਰ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤਾ ਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਸਰ ਹੁਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਵਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਨੀਆ ਤਿਹ ਲੋਏ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਹੋਏ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਕਹਿਤ ਸਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਚਾ ਆਕਾਰ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਤਿਸ ਹੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਮੈ ਰਾਖ ਮਾਨੁਕ ਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ ਤਿਸ ਤੇ ਪਰ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਈ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸੰਦ ਸਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿਹੁ ਅਨਰਾਉ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਹੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਅਣਦਰੂ ਮੰਗਲ ਸਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣਿਐ ਘਰ ਤਾਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਾ ਮੈਂ ਤਪੀਸ਼ਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਇ ਤੈ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ
जाकी लीला की मित नाही सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जान पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जिंदास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाको परमाई जन्म मरे फिर आवै जायु चनी तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख रह करंग नाना विद किनो विस्तार प्रभ विनाशी एकंकार नाना चलत करे किन माही पूरे पूर्ण सब ठाए। नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ जब जब जीव है नानक हर नाऊ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के समुद्रे सुन श्रवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए। नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख समाहि समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर हृदय प्रवेश सत नृत बुझै जे कोय नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत अपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करने हार वरण बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावे सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बुझिया तसाया स्वाद प्रभ कै रंग राज जिन रही गुर कै वचन पदार्थ लही हो जाते दुखट नार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सो बड भागी जन कै संग एक लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपति चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पहचान्या जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तस्मान प्रगटाया भय ते निर्भय होए बसाना जिसते उपजे तिस्माय समाना बस्त माहिली बस्त गडाई ताको पिन्ना कहना जाई बुझै बुझनहार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालनहारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक सा सा सुमार है अपने जन का परदा ढाक है अपने सेवक की सर पर राख है अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राख है ताकि गत में तो कोई न लाख है प्रभ के सेवकाओ को न पहुंचे प्रभ के सेवक उच दे उच्चे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राख है भस्म कर लश्कर कोट लाख है जिसका सास न काटता पोता को राख दे कर हाथ मानस जतन करत बात तिसके करत व्यर्थ जात मारण राख है वरण कोय सर्व जिया का राख सोए काहे सोच कर रे प्राणी जब नानक प्रबल विडानी बार बार बार प्रभ जपिय पिय मृत्यु मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके चवर नाही दृष्टाया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम का संग नाम रजो जन तृप्तानी मंत्र नाम मैं नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कै सदकाम बोलो जजेबा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करै पत भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने स्यों रह समाय जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ सहजूरे कौ नानक से जन पूरे
मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तने अपना तिन जन देहे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व दुख का दाता तिस की शरण सर्व सुख पावै तिस कै दर्शन पाव मिटावै वरसियान सगली छाट तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सतपुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अस्तफदी सतगुर सिक्की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुर मत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिक्के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिक्को नाम धन दे गुर का सिख विड़ भागी हे सतगुर सिक्का अलत पल सुवारै नानक सतगुर सिक्को जी नाल सुमारै गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए नेकामी तिसको होत प्राप स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिस्वे गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ अनिक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन में पार ब्रह्म एक कहे आप नहीं कछ पर मुँह सह सियाल फलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की धर गय गवे सुनकर बचन करन आघाने मन संतोखा तुम पतिया ने पूरा गुर अखियो जा का मंत्र मृत दृष्ट पिखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावै तिस लय मिलाए जे बाए पुस्त अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई था की कीमत किने न पाई अनिक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सतगुरु अपने नाम जिस प्रसाद है सब प्रभ जपने एहो हार रस पावै जन कुए अमृत पीवै अमर सुहोए उस पुरका नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच बदे सेवक को दे मुह माया कै संग नाले मन में रख हर हर एक अंधकार दीपक परगासी नानक परमु दुख तहते ना से तब तुभाई ठाड वरताई अंध पया दुख ना टे पाई जन मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे भव चुका निर्भव हो बसे सगल व्याध मंते खै नसे जिसका सातिन कृपा तारी सा संग जपना मुरारी थित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण प्रियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चर प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोए उत्पुत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी।

नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महासुख होए, हार रस पावे बिरला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्तानी, पूरन पुरख नहीं डोलानी। सुपार भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाउ साध कै संग। परे शरणान सब त्याग, अंतर प्रकाश अन दिन लिवला। बडभागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख हो। सेवकी मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई।

दुष्ट प्रदीप। जब अकार्य कछ न दृष्टेता, पापन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन संवाद, तब बैर विरोध तिस संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सो कहु किसह व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म, तब मोह का किसोभत परम। अपन खेला वर्ती चा, नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहु किस कहु गनी। जब कह रगम पार, तब नरक स्वर्ग कहु कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तर है, तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलता अब करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुख अपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बादे। आपन आप आपिय चर्जा, नानक आपन रूप आपिय पर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कौकीश। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे भूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार, नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पह परवीन, तह वेद कतेव कहा कोचीन। जब अपने आप आपुर धारे, तो सगन अपसगन कहा विचार है। जय अपन ऊच अपने आप नीरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा। बिस्मन बिस्मर

अष्ट पदी। आप कथे आप सुन नहार, आप है एक आप विस्तार, जात सुभावे तं सृष्ट उपाई, अपने भाणे ले समाई, तुम ते भिन्न नहीं किच होए, आपन सूत सब जगत परोए, जा को प्रभ जीव आप बुझाई, सच नाम सोई जन पाई, सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जीता, जी जंतर सबता कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस ताज अवर

सत गुण निदान बेअंत अपार नानक दास दा बलिहार पूरन पूर रहे दयालु सब ऊपर होवत कृपालु।

अष्टपदी संत संग अंतर प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट माहि अनिक रंग नाना दृष्टाहि नौ निदयम

कह न जाई अचरज बिस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाई, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। धरन माहे आकाश पया, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे। तिस्ते भिन्न नहीं कोठाऊ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद प्राण सिमृत मह देख, ससियर सूर नक्षत्र मह एक। वाणी प्रभ की सब को बोले, आप अडोल न कब हूं डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुना अमोल। सर्व ज्योत मह जा की ज्योत, धार रहो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद भरम का नासु, नानक तिन मह इहो विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुनहै सुब बचन, सर्व व्यापी राम संग रचना।

सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एकंकार। अनिक कला लखी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन

तिस जनया बुझाए। सर्वभूता वरतारा सर्व नैना पिकनहारा सगल समग्री जा का तना आपन जसा पी सुना। आवन जानी खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप तो रह जो किच कहना सु आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावै ता ले समाए। इसते हुए सुना ही बुरा और कहो किने कछ करा। आप भला कर तू ततनिकी आपे जाने अपने जी की। आप साज धारी सबसाच ओत पोत अपन संगराच। ताकि गत मित कही न जाए दूसर हुए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिसदा सुख हुए आप मिलाए ले प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया जिस पर साथ सब जगत राया। जन आवन का है सुहाओ जन कै संचित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन को सदा।

पूरे के गुण गाओ अस्पदि। पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सा सिमरहु गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित त्याग तरंग संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहु सा संगगन सागर तरहु। हर तन के पर लेहु पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद सासंग भज परमानंद। नरक निवार उदारु जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चित वह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के

आते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सोत निदान, सर्व इच्छा था की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए स्थान, बहुर न हुए आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त हुए, खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध, विद्या तप योग प्रभु ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कह मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तथ का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग महता की गत होए, गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमृत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुट्टै, जाकै मस्त कर्म प्रपाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुन लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रवचीत, जन्म मरण का दुख निवारै, तू लभ दे तत्काल उदार, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ दे तत्काल उदारै, निर्मल सोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माही सुमानी, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मल ताके कर्म, सब ते

नाम सुखमनी, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहाले वतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण।

जे को पावै तिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वैण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वखत कवण कवण थित कवण वार कवण से रुति माह कवण जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वखत न पायो कादिया जे लिखन लेख कुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सिर ठीक औ साजे आपे जाने सोई केव कर आखां केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दो एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जी को आपौ जाणै अगै गया ना सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलो एक तात लिखा होए ता लिखी है लिखै होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाहे एती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न हो बनी जे तिस मन हो न विसरै है अंत न सिफती कहण न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुनण न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाणै कोए बहुता कहियै बहुता होए वड्डा साहिब ऊचा थाओ ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा होवै कोए तिस ऊचे कौ जाणै सोए जेवड आप जाणै आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए केते मंगह जोद अपार केत्या गणत नहीं विचार केते खप तुटहे वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केत्या दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाणै जे पिया मोहे खाए आपे जाणै आपे दे आखै है से पे केई के जिसनु बख्शे सिफत सलाह नानक पात साही पात साहो अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वख्याण आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाए किते कीते होर करे ता आख न सक है केई के जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल बिगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावन हारे गावै तुहनो पौन पाणी बै संतर गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जाण है लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावै इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले
गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर कीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहन या मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावै जोद महाबल सूरा गावै खाणी चारे गावै खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सेई तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की कर है बेपूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जाग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावह है लेखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ऊना नदर ना आवै बहुता एहो वेडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी भौं लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस एक राहे पत पवड़ियां चढ़िया होए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरे पाई कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना सुरते ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नगरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कूड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िय बहुत अनूप
ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछे पछुताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहे ना ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै केलो करै आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथे लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार आहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै

चाला निराली भगत केरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालों ने की एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगता जुग जुग निराली ज्यो तू चला है तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जेव तू चलाए ते वै चलै जिना मार्ग पावहे कर किरपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे जिसनु कथा सुनाए हे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै ते वै चलावहे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुरहु लिखिया आया एक फिरह कनेरे करह गल्ला गल्ले किने न पाया कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहस जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोवो शब्द लागो हर सिउ रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा इव जाए जियो मैले बारो निर्मल जियो त मैले तिने जन्म जुए हारिया ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मनो वे सारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिर है ज्यो बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिने जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारोह निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुचै नाही मन सा सच समाणी जन्म रतन जिने खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै त सनमुख सिख कोई जियो रहै गुरु नाले गुर के चरण हिरदय त्याए अंतर आत्मै संभाले आप छड सदा रहै परणै गुर बिन अवर न जाणै कोए कहै नानक सुनहो संतो हो सो सिख सनमुख होए जे को गुरु ते वे मुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई पुछौ बबेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावह सच्ची बाणी बाणी ता गावह गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावह ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी त कच्ची सतगुरु भाजों होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करै रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी कहे नानक सतगुरु भाजों होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सचै लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक सस्यों लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप बिचार दे तत्तय सार ना जानी

खाए चले थाउ तिना के काई कार जल तल जिया पूरिया लोआ आकार आकार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सार नानक भगता पुखसा लहन सतना माधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया का चार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे खुमियार पर पांडे ता किया जल्दी करे पुकारू जल जल रुवे पुड़ी चढ़ चढ़ पवेंगिया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पूरी बिन सत्य।

शासन गजी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासुदेव पाचे दर्शन प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई जाय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास ले हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारनौ निधि आवासाय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाही के पवित्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदास अंतर के खालसा से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी के पंज प्यारी चार साहबजादे चाली मुक्त हठियां जपिया जपिया जिन्हें नाम जपया वंड छकिया देख चलाई ते वाहे देख जिट किया तेना प्यार सत्यारे की कमाई का अंतर की बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म ही सही दिते बंद बंद कटवाए कोपरिया लुहाइया चरकड़िया के चढ़े आर न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किसी ने कैसा सत्सा सिंह निभाया तेना भी कमाई का अंतर की बोलो जी वाहेगुरु। गुरुद्वारा अंदर की बोलो जी वाहेगुरु। प्रथ में सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता जित आवण का सद का सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब तर चरिया देख देख की फतेह बृद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिक्की दान केस दान रैस दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीमा मत तुची मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु गरीब महाराज पंथ सदा शाही दत्ताजी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दी दात सेवा संभाल दान अपने खालसा जी बख्शो ये नोटिया दी ओट गुरु न्यासरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु लौंद दोए कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे दाने रास। हे गरीब महाराज जी आपने आपके चरण अरदास में आपने बख्श की है अमृत वेले प्रकाशमान हो संगत दर्शन दर दे के निहाल दता जी बेंत बाणी के पाठ अज भी रागी सिंह ने आपके चरण दासा की वारे कीर्तन कीते ने विद्वान वीर ने अज हुक्मनामे की कथा तैयार की कृपा करो हो भुला चुका जी बाणी माफ करो चे पातशाह जी हो भुला चुका माफ करनिया पढ़ी हुई बाणी शोध के सच कण प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदे निशानी कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध मित्र बाणी टाने मन बुद्धि बख्शिश करो कि महाराज इस खुशी में आप जी बख्शिया दाता पितर कलाब शाह देकर तैयार कर खा देता आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संघ की रचना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दता दुखा क्लेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गीव नवाज आपके बख्शिया दाता जो नगर तुरंत सेवाया प्रवान करनी गीव नवाज आपके चरण सेवा कर रहे सारे टैली सिंह सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाहनी कला बख्शो अति सदा ही इस तरह अपने चरण सेवा की भावन बखरी पालता करो धन धन गुरु दार जी हो गुरु साहब सचे पातशाह विचार दस दार बता जी 1984 गरीब नवाज आप दर कर सेवा दहा गरीब नवाज संत बाबा जनहर सिंह जी पिंडर वाले दार पिता जी साढ़े सारे तो अपनी चोरी गरीब नवाज आपके चरण जाखी करते हैं तारा चरणा पवित्रता कायम रखने वास्ते हरिमंदर साहब सचे पातशाह जी गरीब नवाज गिरदार जी हो गरीब नवाज बख्शिश की है उद्यम बख्शे उत्साह बख्शे जिन्होंने अपने प्यारे सिंघा के समेत संत बाबा जनहर सिंह जी ने गरीब नवाज दरबार साहब जी की रख्या बख्शिश करद हो कुर्बानियां दीतियां शीस बारे दिता है शुभ संगत दार पिता जी उन्होंने सदा प्रणाम प्रणाम दार अच्छे सारे संगत अज उन्हें शहीदी दिन मना रही ने उन्होंने शहीदी दिन याद करते हैं आपके पुत्र चरण पसंद ने संगत आप चरण हाजरी भर रही दार कृपा करो बख्शिश करो इतने पातशाह जी हो उन्होंने इस शहीदी याद करद हो अज नौजवान पीढ़ी को खालसा पंथ सेवक होने दार पिता जी उन्होंने दरसाह मार्ग में अपना वास्तव मार्ग लाग बख्शो भावना दार निकालता करो जी गुरु की बनाई कृपा करो संगत पातशाह जी दार जी हो अमृत वेत लैके दाते आई हैं साफ संगत हाल जी दर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ संगतों का दाते तिर पर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी ई बनाए कृपा करो दूध लाज कर बैठिया लाइफ पिता की दशावन कर रही हैं सारी संगत हाल जी प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ तारा अपने कृपा जी संगत बख्शे
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਵਾਧੇ ਚੜ੍ਹ ਲੋਕ ਪਾਲਦਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆਓ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪੁਰਤ ਕਰਵਾਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿਤਰਕ ਨਵੀਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੜੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਚੰਨਤ ਨਾਦ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿਤ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਆ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਦਿਲੇ ਬਣਾਵ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਾਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ।

रहाओ। आदित्य करै भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहनिस अखंड सुर ही जाए, तो अनहद बेन सहज महबाय। सोमवार सस अम्ब

मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति राम गोसैया जी के जीवना मोह न बिसारो हो मैं जन तेरा रहा मेरी हर हो बिपत जन करहो सुपाई चरण न छाटो शरीर कल जाय कहो रविदास परों तेरी सांबा बेग मिलो जन।

एक ओंकार सत गुर प्रसाद गौड़ी बैरागण रविदास जीओ घट अव घट डूगर घना एक निर्गुण बैल हमार रमैये।

नाम को सहज करूं व्यापार। मैं राम नाम धन ला दिया बिखला दी संसार। उर वार पार के दानिया लिख ले हो आल पताल। मोहे जम डंड न ला गई तजीले सर्व जंजाल। जैसा रंग

वैरागण एक ओंकार सत गुर प्रसाद सत युग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार ती नौ युग ती नौ दिड़े

जाए, जाते आवागवन बिलाए रहाउ। बहुविध धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोए, कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म विचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान, बाहर उदक पखारी है, घट भीतर विभिद विकार, शुद्ध कवन पर होए वो, सुच कुंचर विद व्यवहार, रब प्रगास रचनी, रब प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबो छुए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत लिलाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत समत सत करी, भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट विकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनेक जतन निग्रह किए, तारी न टरै भ्रम फास, प्रेम भगत नहीं उपजै, ताते रविदास उदास।

तुम घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी।

जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फासी जिन हर निर्भउ ते आया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जियो ते हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह।

राग आसा महला पहला चौपदे घर दूजा सुन वड्डा आखै सब कोई केवड़ वड्डा डीठा होई कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई।

प्रमत मन है करे गुर प्रसाद वसै मन आए दुख अनेरा विच हो जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच न दे जे किसे दे वखाणे नानक आगे पुछ न ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दौलक दुनिया वाजह साज नारद नाचै कल का पाऊ जती सती कह रख है पाऊ नानक नाम विटह कुर्बान अंधी दुनिया साहिब जान रहाऊ गुरु पासो फिर चेला खाए ताम प्रीत वसै घर आए जे सौ वरिया जीवन खान खसम पछाण सो दिन परवान दर्शन देखे दया न हुए लय दिते बिन रह न कोय राजा न्याऊ करे हथ हुए रह खुदा कह खुदाए न मान कोय मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता दर फुरमान गुर प्रसाद जाने मेहमान ता किछ दरगह पावे मान आसा महला पहला जेता शब्द।

देखे आपे विकसे आपे नदर करे, जो किछ करना सो कर रहिया, अवरण करना जाई। जैसा वरतै तैसो कहिए, सब तेरी वडियाई। कल कलवाली माया मद मीठा, मन मत वाला पीवत रह। आपे रूप करे बहु भांति, नानक बपुड़ा एव कह। आसा महला पहला, वाजा मत पखा वज पाऊ, होए आनंद सदा मन चाऊ। एहा भगत एहो तप ताऊ, इत रंग नाचहो रख रख पाऊ। पूरे ताल जाने सालाह, होर नचना खुशियां मन माहा रहाओ। सत संतोख वजह दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल। राग नाद नहीं दूजा पाओ, इत रंग नाचहो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवै मन चीत, बह दिया उठ दिया नीता नीत। लेटन लेट जाने तन स्वाहो, इत रंग नाचहो रख रख पाओ। सिख सभा दिखिया का पाऊ, गुरमुख सुनना साचा नाव।

पौन उपाय धरी सब धरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधुलै दै सिर मूंड कटाया, रावण मार क्या वड्डा भया, क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहा, जीव पाए जुगत हथ किन्नी, काली नथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रहया, नाल कुटंब सात वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया, रतन पाए धरी खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपे क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन किया, करे वख्याण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहा, जिन पिया से मस्त भय है, टूटे बंधन।

निरालम बैठा नदर करे विच छाया बीना शब्द बजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहुराता नानक कहे विचारा आसा महल्ला पहला।

जब लग हृदय नया वह याद, तो प्रवाह के ही क्या की जय, जन्म जन्म किचली जी दी जय रहाओ, मन की मत मता गिल मता, जो किछ बोली है सब खतो खता, क्या मुंह लै की चै अरदास, पाप

रहाउ। अधिक त्यास भेख बहु करै, दुख बिखिया सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुविधा छोड़ नाम निस्तरै, सिफत सलाहन सहज आनंद।

सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मन तृप्त न आवे। जो जन्मे सो रोग व्यापे, हौ मैं माया दुख संतापे। से जन बाचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, चल तो मन राखे अमृत चाखे। सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए। नानक विचो आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हिरदय नाम नाही मन भंग, अण दिन नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया। नाम पदार्थ नव निध पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ। ताकै सद बलिहारै जाओ, जो हर राते से जन परवान। तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया।

मिटावे। हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपने शोभा लोरे साध संगे हो मैं शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी पदे। जिस

पदी रमैया के गुण चेत पदा ने कवन बोलते कवन दृष्टा ने जिन तो साध सुबारिश कर रहा गर भगन में जिन उबारिया बाद व्यवस्था तुझे प्यादे दूध पर जोबन भोजन सुख शोध।

कर कर्म तू ठाकुर तुम पैर दास जीव पिन सब तेरी दास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरे कृपा में सुख कनेरे कोई ना जाने तुम लांत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सकल समग्री तुमरा सुत

प्रीत मुख कुंडला पद जानन हर प्रभु प्रवीण बाहर बेख न कहो बीन आप रूप देश आप न कर आप जावत जन्म मर जिसके दरवश निरंकार जिसकी शेख तर संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानकुन जन चरण पराता करो बिनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आप मान आप आप आप करतन वेदा किस दूर जनावत किस बुझावत नेरा ओ पाप सियान सकल रहत सब कुछ जाने आत्म की रहत जिस पाप है तिस लय लड़ लाए थान थन तर रहे सुमा सो सेवक जिस कृपा करे नेमख नेमख जपना।

देह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त तुता को जाप देह प्रसाद रे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा जोरे देह प्रसाद तू पावे सात रे मन मेरे तुता सुनात देह प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपै जपै सुनाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रकाश प्रभु दया ते कमल विकास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए।

अष्टपदी साधक संग मुखुजल होत साध संग मन सगदे होत साधक संग मिट विमान साधक संग प्रगट सुगयान साधक संग बुझे प्रभ निदा साध संग सब होत नवेदा साधक संग पाए नाम रत्न साध

वाच जाका दृष्टि कछु न आवे तिस तत्काल दैत प्रगट आवे जब अपनी करे बख्शीस ताका लेखा न गण जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जी वै दिख बढ़ाई इसका बाल नाही सहाथ करण करावन सरु को नाथ आज्ञा करी बपरा जियो जो दस भावे सोई फुन थियो कब हूँ उच नीच में बसै कब हूँ सोग हर रंग हसै।

सजा कब हूँ पे खारी निजगा साजा कब हूँ अब किरत महे आवे कब हूँ पलाप लग हवे ज्यो प्राव रखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कब हूँ भय पंडित गरीब ख्यान कब हूँ मन तारी लवे ध्यान कब हूँ तट तीर्थ स्नान कब हूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान कब हूँ कीट हस्त पतंग हुए जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप ज्यो सुहागी दिखावे ज्यों प्रभ भावे तिवे न जावे जो तिस भावे सुई हुई नानक दूजा अवरन कोय कबहू साध संगत एह पावे उस स्थान दे बहु न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मान तन नाम रत एक रंग सदा बसै पर ब्रह्म गै संग ज्यों जन मै जला इकटन त्यों ज्योति संग ज्योत सुमन मिट

गर्भ गले अष्टपदी जिस कह अंदर राजा विमान सो नरकपति होब सुवान जो जाने मैं जो मनवंत सो होब दिष्टा गजंत आप सुख करवंत कहावे जन्म रह भोजन प्रमावे तान घूम गा जो करे गुमान सो मूरख अंधा अज्ञान कर कृपा जिस कह हृदय गरीबी बसावे नानक यहां मुक्त अगे सुख पावे धनवंता हुए कर गुरवावे तरण समान काश संग न जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस बल पीतर तंग होए बेनास

बृहस्पति मानो कीट एक व्यक्ति सब जान देव रूप एक भगवान जिसके दिए रहे अकाय बहुन तृष्ण लग आय मार रख है एक आप मानुख कह किश नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होय तिसका नाम रखंड परोय सिमर सिमर सिमर प्रभु सोय नानक बिघ्न लगे कोई उस्त मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहिला कर लह जियो नैनो बेग ठाकुर का रंग साध संग बिंद से सब संग चरण चलो मारु गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दुख है नानक उजल मथा बड़भागी ते जन जगमाए सदा सदा हर गे गुण गाहे राम नाम जुगर विचार सी धनवंत गिरी संसार मान तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जन होते सुखी एको एक एक बचन इत उतकी सोजी जन नाम संग जिसका मन मन नानक तिन है निरंजन जाने गुर प्रसाद आपन आप सुजे तिसकी जान तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत आन दिन कीर्तन केवन बखयान ग्रस में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जान की आसा तिसकी कटिए जम की फसा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसहन लगे दुख जिसको हर ब्राह्मण जित आवे सुसन सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा कर

सो सूखम सोई असूल नह किशन में नह किश मरे आपन चिलता भी करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट अज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रट थाप उथाप अवनासी नाही किश खंड तारण तार रिह ब्रह्मांड अलख अपे पुरख प्रताप अवज पैद नानक जाप जैन प्राप जाता सो सोभावंत सगल संसार उतरे तिनमंत प्रभु की सेवक सगल उदाहरण प्रभु की सेवक दुख विसारण आपे मेन ले कृपाल गुरु का शब्द जाप पै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किसी करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सहज सुपाई होवे सो होई करने हर पिछण सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टना जिस ते उपजे तिस माही समाए ओए सुख निदान उन्हों बने।

नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदर गो थमे थमन त्यो गुरु का शब्द मन है अस्थमन ज्यो पाखाण नव जड़ तरे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए विगास ज्यो महाउद्यान में मार्ग पावे त्यो साधु सांग मेल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाशा तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिरलाई पुरब लिखे का लिखिया पाई दुख सुख प्रभ देवन हर अवर त्याग तू तिस है चितर जो कश करे सोई सुख मान भूला कहे फिर जान कौन बसाई तेरे संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद से ती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हृदय में तो लाद के संत संग चाल अवर त्याग बिखे जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजल हर दर कैसो एहो वापार बिरला वापार नानक तां कै सद बलिहार चरण साधक तोय तोय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साधु पर जाइए कुरबान सा सेवा बड़ भागी पाइये सा संग कीर्तन गाइये आनक बेगन दे साधु रख है हर गुण गाय अमृत रचक है ओट गए संत दरिया सर्व सुख नानक ते पाया मृत गौज वाल नहार भूखे को देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिख गल हिण पाए साव कैश तिस का उकरण जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जाप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तेह लोए जाके हृदय इक होए सच करनी सदता की रहत सच हृदय सतमुख कहत

0: दी
1: चरण सत सत प्रसाद पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भगता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जनमान्या करण करावन तन मूल पछान्या जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय तेंद्र पहोय बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना बस्त माहले बस्त गडाई ताको भिन न कहना जाई बूजा बूजन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर का सेवक जानै संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक कौ प्रभ पालन हारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारै नानक सो सेवक सास सास सुमारै अपने जन का प्रदाता कै अपने सेवक की सर पर राखै अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रखै ताकि गातमित कोई न लखै प्रभ के सेवक कौ को न पहुँचै प्रभ के सेवक ऊंच दे ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी महकल रखै पसम करै लश्कर कोट लखै जिसका सास न काटते आप ताको राखत देख रहात मानस जतन करत बहु पात तिसके करत वृथे जात मारे न रखै वरण कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करै रे प्राणी जप नानक प्रभ लख बड़ाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत एह मन तन तरपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके अवर नाही दृष्ट आया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जंतृपताने मन तन नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह सद काम।

केहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवरो पाप समीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर कहो नाम हरवथ एहो तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन कौ चार कुंट उठता वह सो तन हर सेवा ते पावह जिस सुख को नित बाशे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा पज हर की सरणी अनकुपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निदान मह हर नाम निदान जप नानक दरगह प्रवान मन पर बोधो हर कह नाए दै दिस्ताव त्या बैठाए ताको बिघन न लागे कोय जा कह हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भाव बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म बरगास तित कर जाए बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत बीचार कह जन साचा जन्म वरै सो काचो काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव इहो रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटा वह मूर्ख मना सोतमीत कुटम अर बनता इनते कहो हो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो हो कमन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंफ झूठ पा सारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बा डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के किलबिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुन गाओ गुन गावत त्रि उतर समैल बिनस जाए हो मैं बिक फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल शाड सियानव सगली मना साध संग पावै सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साला है एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहे प्रभ व्याप अनक विस्तार एक ते भय एक आराध पराशित गए

अष्टपदी जाचक जनजाचय प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नितनीत एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रकाश अन धन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जनको प्रभु होय दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इस पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सद संग हजूरी जिसका साधन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे कारणा भानै सो क्यों बिसरे जे किया जानै सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन मह रखै गुरप्रसाद को बिरला लखै सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर पूरे तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपो अवरह नाम जपावहो भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तनहो सीसार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूटत जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तनंतर ही सुआव नेत्रोपेख दर्श सुख होए मन भिक्षा साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभु बख्शंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पढ़ी सो करणी सोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरम

आप अष्टपदी जब आकार एह कश न दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक शोक कहो किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेले आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम पार तब नरक स्वर्ग कहो कौन है अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए तब शिव सकत कहो हो कित ठाए जब आप है अपनी जोत तरह तब कवन निडर कवन कत डर आपने चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुखे अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अभिगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कह हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल छिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तह किसे भूख कमन तृप्तावे करण करावन करने हार नानक करते काना है सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पह परवीन तह वेद कितेब कहां को चीन जब अपने आप उतार है तब सगने अप सगन कहां विचार है जह आपन ऊंच अपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जह अशल अशेद अपेद समाया उहां किसे व्याप्त माया आपस को आप है आदेश तह गुण का ना ही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता कह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथ है कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच दे ऊंचा नानक आपस को आप है बहुचा जह आप रचियो प्रपंचकार तह गुण मैं किनो विस्तार।

सुख मान अपमान अनेक प्रकार की बखियान। आपन खेल आप कर देखा खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अभिगत भगत तहे आप जय पसरे पासार संत प्रताप। दोहु पाख का पह तनी उनकी शोभा अनुह बनी। अपह कौतुक करे अनद चोज अपह रस भोगन द्रजोग। जिस भावे तिसे आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे।

कह दृष्टार राष्ट्रपति आप कथा आप सुनने हार आप है एक आप विस्तार जाति सुभावे ता सृष्टि उपाय अपने भाण लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किस होए आपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जिये जंत्र सप्ता कह हाथ दीन दयाल अनाथ गुनाथ जिस रखै तिस कोय न मारै सो मुआ जिस मनो विसारै तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी।

हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगा अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक घट माहे अनक रंग नानंद रिष्टाहे नौनि ते अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाय चरज बिस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कटकट व्याप रहिया भगवंत तरण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्मा जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिशे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मह देख ससियर सूर नखियत्र मह एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबहु डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइय गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार रहे हो स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद परम का नाश नानक तन में एव विशास संत जना का प्रेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुने सब बचन सर्व व्यापी राम संगरचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख समोही आप साथ किया सब साथ तिस प्रभ ते सगली उत्पात तिस पावेता करे विस्तार तिस पावेता एकंकार अनेक कला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिसे आप जनाए नानक तिस जने आप बुझाए सर्प भूत आप वरतारा सर्व नैन आप वेखन हारा सगल समग्री जाका तनाया अपन जस आप ही सुना आवन जानक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सबके मादा लिप्त हो रहे जो किस कहना स्वा पे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए इसते हुए सुना ही बुरा उरे कहो हो किने कश करा आप भला कर दू थे अत निकी आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत्या अपन संग्राच ताकि गदमित कहीं न जाए दूसर होए ता सो जी पाए जिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक कहो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप में लाए लाए प्रभ सोए ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का है स्वाव जन के संग चित आवे नाओ

पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो, हर तन के भर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवाओ नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के भजन अमलीक लाल, एह रतन सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक है निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लगा हर रंग, जय जय सबदयन आहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय, प्रगट गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए, मिट गए बैर भय सबरे, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होए सेव की सेव, आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभी खेप हमारी, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान का गरचीत, सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोत निदान, सर्व इच्छा की पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए स्थान, बहुर न होवे अमन जान, हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबके मध्य सकल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता।

शरीर एक नगर है, पिंड है। जीव आत्मा इसका सरदार है, चौधरी है, मुखी है। और इस पिंड विच, इस नगर विच इकली जीव आत्मा नहीं बस, होर लोग भी हैं। वखरे वखरिया दृष्टियां, अखां, कान, नासका, ये जड़े इंद्रिय हैं ना जी, ये आवाजा मार मार के लेंदे हैं। ते पिंड दे चौधरी नूं तंग कर, कबीर साहब बाबा आपना बसूंगा, मैं इस पिंड विच नहीं रहना चाहता क्योंकि कोई मेरा कहना ही नहीं मानता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वखरे वखरे इन्हां दे रस्ते हैं। मेरा कोई कहना नहीं मानता, तो मेरी चौधरी की जिम्मेवारी है, मैंने पता है मेरे को लेखा जोखा मंगया जाना, हिसाब किताब लिखिया जा रहा है। हे अकाल पुरख, हे अंतर्जामी, हे सृजनहार, मेरी तेरे अगे हाथ जोड़ के बेनती है, मैनू ये दोबारा पिंड ना दे, मैनू ये दोबारा नगर ना दे, मैं नहीं इस विच रहना चाहता। मेरा जो लेखा जोखा है ना, मेरा इत्थे होना ही नहीं, दोबारा नहीं मैं आना चाहता। धर्मराज जब लेखा मांगे, बाकी निकसी भारी, पंच किसान वा भाग गए, जिहड़े पंजे मैनू सताउण वाले सीगे, मेरे पिंड दे विच मेरे नाल वासी सी, ये तो सारे दौड़ जाने, लै बांध दिओ जीओ दरबारी, दरबार दे विच ते दरबारियां ने जीव आत्मा नूं बन लैणा, चौधरी नूं बन लैणा कि तेरी जिम्मेवारी सी। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पक दिती, मैनू बंदे नूं इसे ही जन्म विच बख्श दे। गुरु प्यारो, जन्म तो मौत तक का जो सफर है, एक दिन जन्म होया, एक दिन मौत भी होगी, जो उपजो सो दिन सहे, ये अटल सच्चाई है। जन्म दसदा है कि मौत भी होगी, इस सृष्टि विच, इस ब्रह्मंड विच कोई भी परमात्मा की सिरजी हुई कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका अंत नहीं। जन्म तो लैके मौत तक का जो समा है उसनु जीवन आख्या जाता, उसनु जिंदगी आख्या जाता, उसनु जीवन आख्या।

एकट सिमरन राम को सोनर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक

अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर कष्टम मेघ राग वै गाव है पांचो संग बरंगन लाव सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आशा गुन गुनी ऊंचे

जित सेवै दर गह सुख पाई नाम तिसै काली जय। आगे हुक्म न चले मूले सिर सिर क्या विहाना साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना ए हो पयाना। जो तिस भावै समरथ सो थीऐ हीलड़ा एहो संसारू जल थल महील रव रहिया सचड़ा सिरजनहारू। साचा सिरजनहारू अलख अपारू ताका अंत न पाया आया तिनका सफल पया है एक मन जिनी ते आया। ढाहे ढाहे उसारे आपे हुक्म सवारन हारू जो तिस भावै समरथ सो थीऐ

साहिब आपना कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे धारण धारे जिनकी आसो जाने, आपे वेखै आपे बूझै आपे हुक्म पछाणै, जिन किछ किया सोई जाने ताका रूप अपारू, नानक किसनो बाबा रूई बाजी है एहो संसारू, वड हंस महला पहला दखणी, सच सिरंदा सच्चा जानी है सचड़ा पर्व दिगारू, जिन आपी ने आप साजिया सचड़ा अलख अपारू, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ेन गुरबिन घूर अंधारू, सूरज चंद सिरजियन अहनिस चलत विचारू, सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा देह प्यारू, रहाओ तुद सिरजी मेदनी दुख सुख देवन हारू, नारी पुरख सिरजै बिख माया मोह प्यारू, खाणी बाणी तेरिया देह जिया आधारू, कुदरत तख्त रचाया सच नबेड़न हारू, आवा गवण सिरजया तू थिर करन हारू, जमण मरना आए गया बदक ज्यों बेकारू, भूडड़ै नाम विसारिया बुढ़ड़ै क्या तिस्चारू, गुण छोड़ बिख लद्या अवगुण।

रूप ना जाने सोहनी है, हुक्म बद्धी सिरकारू, बालक बिरद ना जाननी, तोड़न हेत प्यारू, नौ दर ठाके हुक्म सच्चा हंस गया गैनारे, सात अन छुट्टी मुठ्ठी झूठ विदनिया, मृतकड़ा अंगन ने बारे, सुरत मुई मर माइये, महल रुन्नी दरबारे, रोव कंत महेली हो सच्चे के गुण सारे, जल मल जानी ना वालिया, कपड़ पट अंबारे।

न भाले आप निरालम धंधा बादी कर हुक्म चढ़ावन हारू अज कल कर दिया काल व्यापै दूजे पाए विकारू जम मार्ग पंथ न सुजई उजड़ अंध गुबारू वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन प्रकार।

सैन मिलो संजोगी गुर मिल खोले फासे बाबा नांगड़ा आया जग मह दुख सुख लेख लिखाया लिखियाड़ा साहा ना टले जेहड़ा पुरब कमाया बह साचा लिखिया अमृत बिखिया जित लाया तित लागा कामण यारी कामण पाए बहुरंगी गल तागा हुची मत भया मन हुछा गुड़सा